0: Baiklah warga, akhirnya sampai di sini Hana bersama Anda untuk hari ini. Hana berterima kasih untuk waktunya warga, dan sampai ketemu di edisi Pesona Mandalika berikutnya. Hana pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste.
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोकती? Oh my god, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है.
2: अच्छा अच्छा बोलो बोलो प्यार है. मैं चांदी आला करिश्मा कपूर. अच्छा मैं गंदा आला शाहरुख़न. अच्छा अच्छा
1: और हिंदी कविता
2: डंगर है
3: सोना सोना
2: मंडलिका.